सदगुरु कृपा करे, बख्शिश करे। गुरबाणी की पंक्ति सानू कहती है इसके बारे में।

अमरदास अंगद पहचाना, अमरदास रामदास कहायो, साधन लखा मूर नहीं पायो, भिन्न भिन्न सब हो कर जाना, एक रूप जिन हो पहचाना, जिन जाना तिन ही सिद्ध पाई, तिन समझे सिद्ध हाथ ना नानक अंगद को बप धरा, धर्म प्रचुर।

0: हम गुरु
1: विजय पूर्व देवड़ा जिसकी मस्त किसे घर आवे बैठा सोधी पातशाह
0: रामदास सतगुरु
1: जंतो मन ध्यान धरे फिरत सकल जग कभू को पावे आत्म प्रकाश को वेद बाणी सहत ब्रंच जस गावह जंको शिव मन गहना तजात कबिलाश को
0: जंको जोगी जनी सिद्ध साधक अनेक तब
1: जटाजूट पेख किए फिर उदास को सो तिन सतगुर सुख भाए कृपा।

अगला जंग तो नदर करे जो किस भावे नानका तातो हंस करे अमृतसर तातो हंस करे।

बिसर गई सब बात जब ते साध संगत मोय रहाओ ना को बैरी नहीं देगा ना सगले।

सब मेरा विरया प्रभु एक है, सब मेरा विरया प्रभु एक है, सब मेरा रव रया रया रया रव एक है, सब मेरा रया।

रव रया केजी सब में रव रया बस गई सब रात बनाई जब दे साल संग माई ना को मेरी नहीं दिखाना सगल संग हम गो बने आई जो प्रभु की नो वरमान हो मस मस साधु दे भाई सब में रव रया रव रया रव रया हाँ प्रभु एक है सब में रव रया।

0: श्रवण करो।
1: पहला चार ताल है, फिर तीन ताल है, फिर दो ताल है, फिर एक ताल है।

एक ताल दो ताल हूं तीन ताल श्रवण कर लो नहीं जी दो ताल हो गया हूं तीन ताल जो कब कीनो सो भल मान्यो इस मत साधु ते पाई सब में रव रे आ राव जोग

एक ताल, दो ताल, तीन ताल, चार ताल और चार ही राग, माल कौश, चंद्र कौश, सूर्य कौश, जोग कौश, चार ही पंक्तियां, बिसर गई सब तात्पराई, जब दिशा संगत में पाई, ना को बैरी ना ही बिगाना, सगल संग हमको बने आई, जो कब तीनों सो भल मान्यो, इस मत साधु से पाई, सब मेरा रहे प्रभु कह, देख देख नानक दिखाई। आप जी ने श्रवण किया है तराना, साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज फरमा रहे ने, ए तराना जेड़ा है ए अनकौमा जेड़ियां ने गैर सिखा नू चुका के रख देने वाली बात है। मैं इथे बहुत वड्डे वड्डे गंधर्व गायक कट्ठे हुए सी, कहन लगे जी सिखा नू तां राग गाउणा ही नहीं आउंदा, ऐसा सारे सामने ना कहा, कहिंदे असल वार तां ला लैंदे आ पर राग गाउणा नहीं आउंदा। मैं कहा जी राग साडे सतगुरां ने गाए, कहिंदे गाए तां तुसीं सुनाओ, ए तराना सुनाया और सारे हाथ जोड़ के कहिंदे जी ए सानू लिखा दिओ तराना, असीं तां इस तरह की बंदिश कदी सुनी ही नहीं। मैं कह जी ये फिर साहब गुरु गोबिंद सिंह की दात है, उन्होंने मत्था टेको तो उन्होंने को ही श्रवण करो, उन्होंने को ही दात प्राप्त करो। सारे ने फिर बड़े अदब नाल साहब गुरु गोबिंद सिंह के चरणों नमस्कार की, इतने दुर्गाना मंदिर की बात है, सारे आखो धन गुरु गोबिंद सिंह साहब आना। तो तराना श्रवण करना साहब सच्चे पातशाह आप गाते रहे और आप इन्होंने इस तरह के 20 तराने श्री सरवणों प्रकाश ग्रंथ विद्वान ने, कभी आप दर्शन करना।

छेवें पातशाह गुरु हर गोबिंद जी दे समय बीबी सुलखणी होई है। बहुतियां थावां ते विचारी गई लेकिन कितों पुत्र दी दात ना मिली। शिवालयां ते भी गई, जोगियां दे मठां विच भी गई, कबरां नूं भी जाके पूजिया, मणि मसाणां विच भी गई लेकिन कितों खरैत ना पई। ताई किसे ने सुलखणी नूं सरोत पाई, सुलखणीए जे पुत्र चाहुंदी है तां गुरु नानक दे दर ते जा। इस वेले गुरु नानक दी छेवीं जोत मीरी पीरी दा मालक गुरु हर गोबिंद अकाल तखत ते सुशोभित है। तू उना दे चरणां विच जा के बेनती कर ते जो गुरु नानक दे दर ते जा के अरदास करदा है, मंग मंगदा है, ओ कदे फिर खाली नहीं लौटदा। सत संगत बोलो श्री। बीबी सुलखणी जदों मीरी पीरी दे मालक गुरु हर गोबिंद जी दे चरणां विच गई, जा बेनती कीती, सच्चे पातशाह तेरे चरणां विच अरदास है, मैं सारे द्वारे द्वारे डोल आई हां, कितों खरैत नहीं मिली, इक हुण तेरा दर रह गया और तेरे दर दी मैं स्रोत सुनी है, जो तेरे दर ते आउंदा ओ कदे खाली नहीं मुड़दा। मेरी भी चोली विच इक पुत्र दी दात पा दे, इक पुत्र बख्शो। मेरी पीरी दे मालक गुरु हर गोबिंद जी ने नेत्र बंद कीते और जदों अखां खोलियां ते आख्या, आ सुलखणीए तेरे भागां विच तां सत जन्मां तक पुत्र लिखिया ही कोई नहीं। सत संगत बोलो श्री। बड़ी उदास बेचारी वापस तुर पई, जा रही ते रस्ते विच भाई गुरदास जी मिल गए, अखां विच आंसू सुलखणी दे। भाई गुरदास जी कहण लगे, की गल है बीबी, आ गुरु नानक दे दर ते तां जेड़ा रोंदा होया आउंदा ओ भी हसदा जाउंदा है, ते तू क्यों रो रही है? आख्या, एक दात पुत्र दी मंगण आई सां, लेकिन अज गुरु नानक दे दर तों भी जवाब हो गया। भाई गुरदास जी कहण लगे, साहब जी ने की आख्या? आख्या, साहब जी क्यों दे, तेरे भागां विच पुत्र है ही कोई नहीं। तां भाई गुरदास जी कहण लगे, तां तू बेनती करनी सी जे उत्थे भागां विच नहीं लिखिया ते हुण लिख दियो। सत संगत बोलो श्री। उत्थे भी लिखण वाला तू ही है और इत्थे भी देण वाला तू ही है। तां बीबी सुलखणी जुगत दसी भाई गुरदास ने। भाई गुरदास जी कहण लगे, जदों कल साहब जी साहब जी जाऊंगे ना बाहर घोड़े ते सवार होके, तां फिर तू रस्ते विच बेनती करी। अज बीबी सुलखणी रस्ते ते आके खड़ो गई, क्योंकि पता सी कि अज इस रस्तेओ मीरी पीरी दे मालक गुरु हर गोबिंद जी ने लंघना है। आके रस्ते ते खड़ो गई, जदों साहब जी आए घोड़े ते चढ़े ते बीबी सुलखणी ने चरण पकड़ लए। ओ गरीब निवाज, कृपा करो, नाम मेरा सुलखणी, मैं वसदी हां चौबे, अर्ज करेनी आ गुरु हर गोबिंद अगे, अफल जांदी नू कोई फल लगे। सात संगत बोलो श्री। बेनती कर दी हां एक पुत्र दी दात। साहब जी कहन लगे, तेनू कल जो क्या सी तेरे भागां विच नहीं। आख्या, फिर गरीब निवाज, उत्थे भी भाग लिखण वाला तू ही है और इत्थे भी भाग बनाउण वाला तू ही है ना, जे उत्थे नहीं लिखिया ते हुण लिख दे। ऐसी जदों प्यार दी बेनती कीती, साहब जी बड़े प्रसन्न हो, आख्या, चंगा सुलखणीए तेनू पुत्र बख्शिया। बीबी सुलखणी हाथ जोड़ के कहण लगी, मेनू बहुतिया ने कहा तेरे घर पुत्र होएगा लेकिन अज तक होया कोई नहीं, हुण मेनू कहते इतवार नहीं, मेनू लिख के दे के जाओ। साहब जी कहण लगे, अच्छा, फिर कागज कलम लिया लिख देइए। होर तां कुछ ना मिलिया सुलखणी नूं, सामने एक ठीकरी पई सी घड़े दी,
ਉਹ ਠੀਕਰੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਇਸੇ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਪੱਠੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਠੀਕਰੀ ਤੇ ਏਕਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਸ਼ਵਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ। ਘੋੜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੁੰਭ ਹਿਲਾਇਆ, ਆਖਿਆ ਠਹਿਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੇਗੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਠੀਕਰੀ ਤੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਜੋ ਏਕਾ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਜੋ ਸੁੰਭ ਹਿਲਾਇਆ ਏਕੇ ਦਾ ਸਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੈ ਸੁਲੱਖਣੀਏ ਇੱਕ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਤ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਲੋੜ ਹੀ ਸੱਤਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਲੋੜ ਹੀ ਸੱਤਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ ਲੈ ਕੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਾ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ ਤੇ ਰਸਨਾ ਨਾਲ

0: गुरमुख रंग चलून लिया,
1: कहो
0: नानक रंग चलून पे है, गुरमुख रंग चलून लिया, मेरा मन तनो भिन्ना, मेरा मन तनो भिन्ना, जल नानक मुश्क चकोलिया, सब जन्म

स्वामी किस गुरु सिख गुरु उपदेश सुनावे जन नानक धूड़ मंगे तिस गुरु सिख की।

हे परमात्मा बस एक गल का ख्याल करी मैनू तू ना विसारी मैं ते तेरे अगे बेनती ही कर सकदा रोस कर रहे ने अकाल पुरख नाल हे परमात्मा जे तेरा नाम ही नहीं सी जप सकदा तेरा सिमरन नहीं सी कर सकदा तेरे घर ही नहीं मैं आ सकदा सी मैनू कानू इस जात विच भेजे किसी उची जात विच भेज दें तेरा नाम ते जपदा तेरा सिमरन ते करदा नीवी जात वाले नू नाम जपन का भी हुक्म नहीं ख्याल करो इस समाज की हालत सी इस समाज के अंदर मंदिर विचों कटे हुए नामदेव नू धन गुरु अर्जन साहब ने आवाज मारी आ नामदेव तू मेरे को की होया तेनू मंदिर विचों कढ़िया गया मैं तेनू हर मंदिर विच बिठा दिना हाले के जोहरा फिर गया पर उन्हां जात अवमानिया दे मन फिर भी नहीं फिरे उथे दे उथे खलोते हंकारियां निंदकां पिट दे नाम देव मुख लाया हंकारियां वाल जात अवमानिया वाल पिट हो गई नाम देव नूं मुख सामने विखाया परमात्मा ने लेकिन उन्हां दे दिमाग उथे दे उथे खड़े उसे तरह दे उसे तरह ही हन कैसी कमाल दी गल है जी नामदेव हरिमंदर विच उदों भी बैठे सन नामदेव हरिमंदर विच अज भी बैठे हुए है किसी सिख की ताकत कोई आखे कि नामदेव जी तुसी परां हो जाओ मैं गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टेकना नहीं कोई कह सकता क्योंकि यह मान बख्शे गुरु अर्जन साहिब ने ते गुरु दा दित्ता कोई मान खो नहीं सकता कोई लै नहीं सकता कैसी गल है उस वेले समाज विच ए हालत सी लेकिन धन गुरु अर्जन साहब ने अपने नाल बिठा ले अड दा मिनिस्टर नाल कुर्सी बर्दाश्त नहीं करदा वो कहना मैं ही बस उत्ते होवां मेरे नाल ना कोई बवे पर धन गुरु अर्जन साहब ने ते अपने नाल कईयां नूं बिठाया एक रूहानी थाल तैयार कीता धन श्री गुरु ग्रंथ साहब दा रूहानी रूह दी खुराक 36 प्रकार का जिदे अंदर भोजन है जिन छा के मनुख तृप्त हो सकता है हालांकि नामदेव ने आवाज केड़ी दिती है

गल राम दे नां दी है पर सतगुरु ने क्यों बुलाया? वो कह लगे मैं तेरी जात नूं आवाज नहीं दित्ती, तेरी जोत नूं बुला रहा। जिहड़ी जोत इस गल दी गवाही कर रही है सबे कट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले, उस तो बिना कौन बोल सकता है? फिर कहिंदे ने

आनंद प्राप्त हुंदा है, हरेक दुख दूर हो जांदा है और गुरु दी शरण पै के परमात्मा दी सिफत सलाह करनी ही चाहिदी है। साहिब फरमाउंदे हन कि ऐसे गुरु दी उस्तत कीतियां

अगर कोई चोरी दे तन दी अरदास करदा है, पता भी है कि जिदी मैं अरदास कर रहे हैं एदी कमाई नेक नहीं। अगर वो अरदास करदा है तो साहब जी कहंदे ने वो फिर दलाल है, तो उहदे भी हाथ वड्डे जाणगे क्योंकि उसने इंसाफ नहीं किया। रब की दरगाह विच सच

उसने बड़े तरले ले। भोजन छड़ के ना जाओ, आज खुशी का दिन है, मेरे घर लड़का पैदा होया। कहन लगी कुछ भी होवे, असा भोजन नहीं छकना।

कहने लगा मेरे घर बच्चे ने जन्म लिया, ब्राह्मणा ने प्रसादा नहीं छकिया, कहंदे ने तेरा घर सूतक वाला। ए दुखी बैठा सी, किसी ने कहा दुखी ना हो, इत्थे धन गुरु नानक।

से फिटे गुरु बाबे फिटके से फिटे गुर अंगद कीते कूड़े गुर तीजी पीढ़ी विचारिया क्या हाथ के ना विचारे गुर

हमारी जेहबा एक प्रभु हर के गुण अगम अथाह। हम क्यों कर जपे आणिया हर तुम वड अगम अगा।

हमारी जय बा एक प्रभु, जय बा एक अनेक गुण, तरे नानक चरणी पाहे। जय बा एक कवन गुण कही है, तेरे गुण बहुते मैं एक न जाने। कवन गुण कही है जे बा एक, तू समरथ वड़ा मेरी मत थोरी राम, मेरी मत थोरी राम, हम अज्ञान अल्प मत थोरी मत थोरी, तू समरथ वड़ा वड्डी हूं।

निर्मल निर्मल सूचा, निर्मल निर्मल सूचा, सूचो सूचा सूचो सूचा, सूचो सूचा सूचो सूचा, अंत न अंता सदा बेअंता, कहो नानक ऊंचो ऊंचा, ऊंचो ऊंचा, ऊंचे ते ऊंचो जानी जे प्रभ तेरो थान, ऊंचे ते ऊंचो जानी जे प्रभ तेरो थान, तेरो थान, तेरा थान सुहावा रूप सुहावा, तेरे भक्त सोहे दरबारे, तेरा थान सुहावा, तेरा थान सुहावा, धरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया, तेरा थान सुहावा, हर जपे हर मंदिर साजिया, हर मंदिर साजिया, संत भगत गुण गावे राम, हर मंदिर साजिया, निर्वैर पुरख सतगुर प्रभ दाते, निर्वैर पुरख सतगुर प्रभ दाते, हमें अपराधी तुम बख्शाते, जिस पापी को मिले

0: जन नानक को हर बख्श रहे हो, जन नानक को हर बख्श रहे हो।
1: हमारी जेहबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाह, हम क्यों कर जपे आने हर तुम मद अगम अगाह। हर देहो प्रभु मद गुर सतगुर के पग पहा, सत संगत हर मेल प्रभ हम पापी संगत रहा।
0: जन नानक को हर बख्श ले हो, हर तुटे मेल मिला,
1: हर कृपा।

तो पांच तारे मिल के पढ़िए और जतन करिए, जो गुरु ने शान पूर्ण पा के दसे हैं किड़ा प्यार कीता गुरु ने साडे नाल, असी भी जतन करिए उन्हों प्यार करन उचारण करो श्री वाह। भाई शाह भाई गुरदास जी ने गुरसिख का गुरसिख नाल कितना प्यार होना चाहिए किवें दस्या, आख्या सिर उच्चा नीवे चरण सिर पैरी पांदी। एक बड़ा सुंदर सवाल है, सिर उच्चा है सब तो नीवे पैर हैं, भाई साहब कहें फिर पैरां वाल सिर क्यों जांदे, उन्हां कदमां दी की खूबी की है, सारियां पैरां ते तां नहीं सिर झुक जांदा। उचारण करो श्री वाह। सिर उच्चा नीवे चरण सिर पैरी पांदे, मूंह अखी नक कन हथ दे पार उचांदे, ये सारे चिन्ह उपर हन, मूंह अखी नक कन हथ दे पार उचांदे। हजूर कहंदे न सब चिन्ह छड पूजियन, कदमां दी पूजा क्यों होंदी है, वो कौन कर्म कमांदे, वो कदम केड़ा कर्म करते हैं जिन्हां कदमां ते बदो बदी सिर झुक जांदा है। उचारण करो श्री वाह। अगलियां टुकां विच भाई साहब जवाब दे रहे हैं, आप कहते हैं भाई वो कदम तां तनता दे योग हैं, गुर सरणी साध संगति ने चल चल जाते, गुरु के सिख दे कदम सत संगत वाल जान चंगे लगते हैं। अमृत वेले उठ के गुरु का सिख इशनान करदा है ते फिर मुख तो जप रहा है श्री वाह। इधर चले हो जी, मैं गुरुद्वारे चले, किदी सोहनी सुगंधी है, कितनी सोहनी शोभ है, क्योंकि पहली पौड़ी ही गुरसिखी दी अमृत वेले जागना है। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने आ किड़ी फौजल बनी हुई सी, 10 लाख का फेरा सी, इतिहास में पढ़ो जदों आनंदपुर साहब का किला छड़िया ते एडे वड्डे फौजल विच भी उन्होंने अमृत वेला बिना कीर्तन दे नहीं बिताया। जदों अमृत वेले का समा होया, भाई दया सिंह साडा अमल टुट गया, गरीब नवाज समझ नहीं आई, आख्या आशा दी वार दे कीर्तन का समा जा रहा, ते उथे भी बह के आशा दी वार दा कीर्तन होया। हुण असी अपने अंदर चाती पाईए कोई केड़ा सुख है जो वाहिगुरु ने सानू नहीं दिता, ते फिर इन्हें सुख प्राप्त करके भी असी उहदा शुकराना नहीं करते। उन्होंने तो सानू पूरने पा के दसे हन कि इतने पौजल विच भी गुरु के सिख ने अपना नितनेम त्यागना नहीं, ते असी एडिया सुखां विच रह के भी जे उहदा शुकराना नहीं करदे तां फिर सिख कदे होए। उचारण करो श्री वाह। इस लई आओ भाई, भाई साहब गुरदास जी पूरने पा रहे हैं कि अमृत वेले उठ के इशनान करके जो गुरु के दरबार जांदे हन, भाई गुरदास जी कहंदे हन उन्हां नूं कह दिओ जिहड़े जोड़े उन्हां पहने हन ओह उतार देन, पता नहीं किस चमड़े दे हन, आ मेरे तन दे चमड़े दे जोड़े बनवा के उन्हां नूं पहना दे। उचारण करो श्री भाई। गुर शरणी साध संगति नित चल चल जांदे, वतन पर पुकार नूं कर पार गोसांदे, मेरी खलो मौजरे गुरसिखां दा। तो भाई इतनी निम्रता गुरु घर विच है, परस पर आपस विच प्यार करिए, जदों भी मिलिए फतेह बुलाइए वाहिगुरु जी का। हजूर का वचन है जेड़ा पहला फतेह बुलावेगा मेरा मुख उस वल होवेगा। उचारण करो श्री भाई। होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुबदा दूर करो निवलाए, हर नामे की होवो जोरी, गुरमुख बैठो सफा विषय। आज जुड़े बैठे हो, हजूर कह रहे हन सही सुंदर सोहने साध संगत जो बहने, गुरु नूं कोई सुंदर लगदे हन चंगे लगदे हन जो सत संगत विच बह के जपदे हन श्री वाह। तो धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दा
ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮ ਨਾਲ ਇਹ ਦੀਦਾਰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹ ਅਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਬਰਕਤਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉੱਥੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਲਖਮੀ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵਈ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਹਨ, ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਹਨ, ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਵਧਦੀ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਰਥ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਲਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀ ਆ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਥ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਆਪ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਦ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇਗੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਤ ਸੰਗਤ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਸ ਕਰੀਏ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ, ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ। ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੌਰ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।

कहते हैं मैं परम गति पाले ही सब तो उच्ची आत्मक अवस्था अकाल पुरख वाहिगुरु दे मिलाप दी पाले ही है। भगत रविदास जी दस दहन के मेनू ते सात संगत दे द्वारा ही प्राप्त हुई, बाकी दे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विच वी इस आईडिया नू इस तरह सपोर्ट करते हैं, इस दे नाल सहमत हैं, इस दे नाल इकमिक हैं, अते ताकीद करते हैं कि इंसान ए जिज्ञासु ए सीकर जे तू उस अकाल पुरख वाहिगुरु नू ढूंढना मिलना चाहना है जो कि तेरी जिंदगी का निशाना है तो सात संगत तो अलावा होर दूसरा कोई रस्ता नहीं। महाराज जी बाणी च इस तरह आखते हैं, कहते हैं

संगत दे विच आत्मक तौर ते अंदरले जीवन वल्लों रूहानी जीवन वल्लों स्पिरिचुअल लाइफ वल्लों आत्मक जीवन वल्लों जो बिल्कुल खत्म हो चुका है मरिया होया इंसान है कहिंदे साधु दे टच दे द्वारा साधु दी जो एनर्जी दी फील्ड है उस दे विच आंदियां ही कहिंदे ओ इंसान भी द्वारा जिंदा हो जांदा है उस दे विच भी रूहानी जीवन दी शुरुआत हो जांदी है। साध के संग सदा प्रफुल्ल साधु दे संगत दे विच हमेशा इंसान दी जो सोल है ओ डिवेलप करदी है ओ ब्लूम करदी है। इस करके गुरु बाबा जी भगत रविदास जी दे इस आइडिया नू बाणी दे राही सपोर्ट करदे हन उस दे नाल सहमत हन कि गुरुआं दी भगतां दी एक ही विचार है ओ ए है कि अकाल पुरख वाहिगुरु जो प्राणा दा नाथ है ओ सबना दा प्यारा है अगर उसनू मिलना है तो एक ही ढंग है ओ है साध संगत प्रेम नाल।

बहुत कमाल की गल बाबा जी बाणी च आखते हैं कि जो साधुओं का संग है वो सिर्फ इत्थे ही काम नहीं आता, किसी होर दुनिया च भी काम आता। बाणी का प्रमाण सुनो, कहते हैं

साधु मित्र हन जिन्होंने ढूंढ सज्जन संत पक्या जिन्होंने पक्के हुए आत्मक जीवन दे विच प्रपक्ष साधुओं के नाल अपनी मित्रता पाई है, कहिंदे हन ए जिहड़े कच्चे हन इन्होंने तो इत्थे ही छड़ जाना है। कहिंदे हन तुहाडी रूह नूं ओह खुआर नहीं होण दिंदे, तुहाडी रूह नूं पटकण नहीं दिंदे। साधु संत दोनों जहानां दे विच तुहाडी जो है वह संभाल करते हैं। इस करके साध संगत नालों वड़ा होर कोई टंग ही नहीं है भक्ति का। इस करके होर सारिया विधियां जड़िया हैं वह साध संगत के मुकाबले दे विच कुछ नहीं हैं। प्रेम नाल गाओ।

बहुत प्यारे वचन हैं। ये शब्द इतना इतनी परफॉर्मनेस दे नाल भरिया पिया है कि असी इसनू अपनी जिंदगी अगर कमा लईए, इसनू वरत लईए, तो साडा जीवन भगत रविदास जी की तरह बदल सकता है। भगत रविदास जी कहते हैं, फिर मैं की कीता, जोई जोई जोरियो सोई सोई फट। जो भी अपने अंदर सुभा जोड़े हुए सन, सुभा पकाए हुए सन, इन्वेस्टेड हैबिट्स सन, कहिंदे उसनु मैं सारे नु सारे नु एक कचरा समझ के पाड़ दिता। जोई जोई जोरियो, असी कई दफा एक दफा किसे नाल नाराज हुन्ने हां, फिर उसनु असी अपने अंदर जोड़ लेने हां, उस नाराजगी नु फिर सारी उम्र रखते हैं। किसी ने अगर सानू कोई बुरा शब्द किसी वेले कह दिता है, वह फिर सानू सारी जिंदगी याद रहिंदा है। जो भी उस परसन नु असी देखते हां, उस रेफरेंस दे विचों देखते हैं, उसे रेफरेंस दे विचों देखते हैं। मेरे नाल किसी ने बुरा किया है, उसनु असी भुला नहीं सकते। कहिंदे जोई जोई जो रहे हो, अगर 10 साल पहला किसी इंसान ने कोई गलत काम किया है, वह सुधर भी जाए, तो साडिया निगाहों के जदों असी उसनु मिलांगे देखांगे, तो असी यह कहांगे सानू पता है 10 साल पहला किदां दा हुंदा सी। दिस इज अवर नॉर्मल बिहेवियर। 10-15 साल पहला अगर किसी इंसान का जीवन किसी होर किस्म का सी, जो कि बहुता एक्सेप्टेबल नहीं सी, लेकिन वो इंसान अपना जीवन बदल लेता है। उसने तो जीवन बदल लिया है, लेकिन लोगों ने ओपीनियन नहीं बदली अपनी। लोग उसनु यही कहते हैं कि जानते हैं असं इसनु 10 साल पहला की करता हूं, उसनु क्रेडिट दो, उसनु शाबाश दो कि इसने अपना जीवन 10 साल के कितने का कितने ले आता है, बदल लिया है, ना कि तुसी उसे नु ही देखना है। बाणी दे विच एक साडी जो अवस्था है, साडी जो आदत है, उसके प्रति बहुत खूबसूरत लाइन महाराज ने दर्ज की है। कहते हैं, माखी चंदन पर हरे जह बिगंग तह जाए, माखी चंदन पर हरे जह बिगंग तह जाए। जड़ी मक्खी है वह चंदन ते नहीं बैठती, उन्हू त्याग दिंदी है। जह बिगंग जिथे गंदगी है उथे जाके बैठती, उथे जाके बैठती। तो असी भी अपने जीवन दे विच किसी की खूबसूरती नू, किसी दे शुभ गुण नू जदों देखते हां, ते नाल दी नाल कोई उहदा कोई ना कोई अवगुण जां कोई उसका पिछला कर्म जरूर देखने की कोशिश करते हैं। भगत जी कहते हैं, मेरिया निगाहां च मैं अपने अंदरों जो भी जोड़िया सी कहते सब पाड़ के रख दिता। अगर किसी नाल नहीं सी बनती तो उसनू जाके आप बुला ले। कोई अगर मैनू मैला लगता सी तो उसनू आख्या गले लगा के, भाई तू ही मैला नहीं, मैं तेतों भी खुद ज्यादा मैला। जोई जोई जोरियो सोई सोई फाटो। जेड़े गलत सुभा पक चुके सन, आलस का सुभा गलत है, निंदा का सुभा गलत है, चुगली का सुभा गलत है, होमे का सुभा गलत है, उच्चा बोलन का सुभा गलत है, कौड़ा बोलन का सुभा गलत है, ये सारे पक्के हुए सन। कहिंदे ओ सारे दे सारे मैं, दिस वॉज द सैकेंड इफेक्ट ऑफ द साध संगत, कहिंदे मैं ये सारे दे सारे फौरन पाड़ सकते, डिले नहीं की। जोई जोई जोरियो सोई सोई फाट्यो, झूठे बंज उठ ही गई हाट्यो। वो कहते जी झूठ की दुकान खोली उसी मैं, वो उठ ही गई है, खत्म ही हो गई। अखीरली लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही अर्थपूर्ण है, जिस दे विच भगत रविदास जी आखते हैं, पहला उसमें सुनो फिर उसका अर्थ करांगे।